हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब सलाम। यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है सभी की दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, शादी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहदिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। सुनने वालों आज मंगलवार का दिन है, 22 तारीख सितंबर का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को यदि लाख लाख बधाई हो मुबारक हो रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। घड़ी की ओर देखा जाए 7:00 प्रोग्राम में 3 मिनट व्यतीत हो चुका है। तमाम इन्फॉर्मेशन इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 030-265-65-60। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का एप नंबर 030-262-66-11। वेबसाइट होता है radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए ये प्रोग्राम आप सुन सकते हैं। उसी वेबसाइट की जरिए भी आप मेल और रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं और उसी वेबसाइट पर तरह तरह की इंफॉर्मेशन इन्फो आपको दिया जा रहा है, खबरें आपको दिया जा रहा है। यहाँ से हम आपको ले चलते हैं प्रोग्राम भजन यात्रा की ओर। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरि हरन की आवाज में सुबह सुबह लो शिव का नाम, पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों।

रेडियो SBS की जरिए पेश की गए हरिहरन की आवाज में सुबह सुबह लो शिव का नाम। हरिहरन के आवाज में ये सुंदर सा भजन हर सुबह हमारी सभी भक्त प्राणियों के लिए रेडियो SBS का सभी सुनने वालों के लिए बस पेश किया जा रहा है। और हर सुबह बहुत सी सुनने वालों है जो रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं बहुत सी सुनने वालों भी जागे हुए हैं और रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं। प्रोग्राम भजन यात्रा जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। मंगलवार का दिन है, 22 तारीख सितंबर का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन रेडियो SBS की तरफ से, और प्रोग्राम को जरूर सुनते ही रहना। स्वागत किया जा रहा है सभी सुनने वालों जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है, और खास तौर पर सभी सुनने वालों जो आज भजन यात्रा प्रोग्राम शुरू होने से पहले स्टूडियो की ओर तार किया है और अभी तक सुनने वालों बस तार कर रहे हैं, सभी को शुभ दिन। तो चले प्रोग्राम में अगला भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं। सुंदर सा श्री हनुमान जी का भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया।

सुंदर सा भजन उस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुंदर श्री हनुमान जी का भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश हुआ है रेडियो SBS के जरिए। प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है और चले प्रोग्राम में एक सुंदर भजन लता जी की आवाज में पेश किया जा रहा है। फिल्म एक फूल चार कांटे उसी फिल्म का ये सुंदर सा भजन पेश किया जा रहा है।

आश्रोबी थे ये सुंदर सा भजन लता जी की आवाज में आपने सुना और बेहद पसंद किया है। फिल्म एक फूल चार कांटे उसी फिल्म का ये सुंदर भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। चलिए प्रोग्राम में आज जबकि मंगलवार है तो सुंदर सा श्री हनुमान जी का भजन बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

महेंद्र कपूर, महेंद्र कपूर जी की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है। फिल्म बजरंग बली, उसी फिल्म का ये सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई। सर ही 7:00 प्रोग्राम में 5 मिनट व्यतीत हो चुका है। प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। अब की बार लखबीर सिंह लाखा की आवाज में सुंदर भजन पेश किया जा रहा है।

की आवाज में ये सुंदर और सुंदर भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-6611। इसी तरह के नंबर पर रेडियो एसबीएस का ऐप पर भी आप

सुंदर सा शिव जी का भजन आज के प्रोग्राम में पेश की गई। सुनने वालों आज मंगलवार है, 22 तारीख सितंबर का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है और प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। चले श्रेया घोषाल की आवाज में, श्रेया घोषाल और सलीम की आवाज में सुंदर सा श्री हनुमान चालीसा बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

कि आवाज में ये सुंदर सा श्री हनुमान चालीसा बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए यहाँ से ये प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन के साथ भजन यात्रा प्रोग्राम जो है समाप्त किया जाएगी। आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो वेस्ट में, इसका पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार के तरफ से आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले है, काम करने वाले है, सभी को शुभ दिन। सभी सुनने वालों जो दुनिया के कोने कोने में रेडियो वेस्ट में इसका प्रोग्राम को सुनते हैं और सभी सुनने वालों जो रेडियो वेस्ट में इसका ऐप पर ऐप किया है, उनके लिए, उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर सा श्री हनुमान जी की आरती बस पेश किया जा रहा है अरोरा की आवाज़ में।

0: सुंदर सा आरती भजन अरोरा की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। यहाँ तक प्रोग्राम भजन यात्रा आज मंगलवार 22 तारीख सितंबर का आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है। सभी सुनने वालों को एक बार फिर से शुभ सुबह शुभ दिन। कल बुधवार है और कल सुबह 7 बजे से फिर प्रोग्राम भजन यात्रा जरूर और जरूर सुनते ही रहना, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जाएगी।
1: Goedemorgen, je luistert naar Radio SBS. En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
0: Supermarkt Toko de Waag in Utrecht. Bij Supermarkt Toko de Waag elke dag volop nieuwe aanbiedingen. Zoals op verse Surinaamse groenten, verse vis, ook hier verkrijgbaar. Alle kruiden, blikproducten, alle soorten rijst, mithai en alle puja saman, kleine en grote murti. Supermarkt

रेडियो SBS केसरी खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए अनुराधा पोटवल और सोनू निगम की आवाज में। 8:00 प्रोग्राम में 10 मिनट व्यतीत हो चुका है। आज मंगलवार का दिन 22 सितंबर का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। दिनसदाह 22 सितंबर हो चुका है। आप सभी सुनने वालों को खूबसूरत सुहाना दिन बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा टीम के तरफ से। रेडियो SBS की जरिए हमेशा न्यूज मौसमी समाचार और फरकेट से इंफॉर्मेशन से आपको दिया जा रहा है। तरह तरह की खबरें, न्यूज, देश विदेश का समाचार और खासतौर पर मौसमी समाचार और आपको भी खबर किया जा रहा है। कहां पर हॉलैंड देश के अंदर में इस वक्त लंबी फीलर होते हैं, एक लंबी ट्रैफिक फीलर होता है। आत्वालफ वुर्दन रिक्टिंग हरमलन daar is een ongeluk gebeurd en daar zijn twee rijstroken afgesloten. Wat labote he. Die ik accident hoor he. A12 Woerden richting Harmelen. We hebben twee rijstroken band he. काफी लंबी फिला यहां पर इस वक्त है।

और आज का मौसम भी जिस तरह से आपने सुना, बदली बदली सा मौसम होने वाले है। बादल छाया हुआ मौसम आज होगा, धूप शायद यहाँ वहाँ कहीं दिखाई देगा, लेकिन ज्यादा हिस्सा में बादल छाया हुआ मौसम होगा। चलिए प्रोग्राम में गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। गाना जो अब की बार प्रोग्राम में पेश किया जाएगा, आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जरूर और जरूर सुनते ही रहना, उदित नारायण और लता जी की आवाज में मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म का नाम। और आपको मालूम होना चाहिए कि रविवार 15 तारीख नवंबर रोटरडम आहोई में उदित नारायण और आदित्या नारायण का कॉन्सर्ट पेश होने वाले हैं रोटरडम आहोई RTM स्टेज में। और टिकट i-ticket.com वेबसाइट के जरिए, उसी वेबसाइट पर आप जाकर खरीद सकते हैं।

से है तू। उदित नारायण और लता जी की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए हमारा प्रोग्राम अच्छी क्वालिटी साउंड में आप सुन सकते हैं और उसी वेबसाइट के जरिए भी आप मेल कर सकते हैं और रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं। चले प्रोग्राम में कुमार सानू जी की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है आज मंगलवार की खास सुबह की प्रोग्राम में। द बेस्ट बॉलीवुड हिट्स सिर्फ रेडियो SBS के जरिए संगीत भरी स्टेशन आपका मनचाहत रेडियो स्टेशन। आपका मनचाहत रेडियो स्टेशन ये है रेडियो SBS।

जिंदगी कोई तो साथी चाहिए। गाना बस प्रोग्राम में कुमार सानू जी की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। खूबसूरत नख़्मे आज की सुबह की प्रोग्राम में और हजारों हजारों सुनने वालों बस इस वक्त रेडियो SBS का ये प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं। हम देख रहे हैं हॉलैंड देश के बाहर देश विदेश में भी काफी सुनने वालों होते हैं जो रेडियो SBS का प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं। एक बार फिर से कुमार सानू होगा साथ में साधना सरगम।

जीना मरना तेरे संग फिल्म का नाम, विपिन सचदेवा और अनुराधा पोटवाल जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। तकरीबन 9 बजे से पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जाएगा आप सभी सुनने वालों की सेवा में। हमारी बहुत सी सुनने वालों बस स्टूडियो की ओर तार किया है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-262-6611 और ऐप द्वारा भी रेडियो SBS का ऐप के जरिए भी आप तार कर सकते हैं। कुमार सानू और अलका प्रोग्राम में

और सानू और अलका जी की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो एस बी एस के जरिए अभी आपने सुना। शहरी तरह से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। इंडिया भारत देश में भी काफ़ी सुनने वालों होते हैं जो हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं, खासतौर पर धर्मेंद्र चौहान आपको भी शुभ दिन। इंडिया भारत देश अलीगढ़ में हमारा प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं, आपको भी शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो एस बी एस का प्रोग्राम जरूर है और ज़रूर सुनते ही रहना। उदित नारायण और साधना सरगम प्रोग्राम में होगा।

प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। यहाँ से आज मंगलवार 22 तारीख सितंबर का पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगी। प्रोग्राम को आप जरूर सुनते ही रहना, बहुत सी सुनने वालों है जो इस वक्त प्रोग्राम को सुनते हैं। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश करने से पहले आप सभी को स्वागत किया जा रहा है गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ। तो ले चलते हैं आज के प्रोग्राम का पहला पुरानी फिल्म का गीत की ओर, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में

फीस की आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब की बार मरहूम मोहम्मद रफी की ओर हम आपको ले चलते हैं। गाना जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है

0: हमारे डैडी की मर्जी के खिलाफ हमारा इस तरह से और मिलना।
1: किशोर कुमार के आवाज में खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। फिल्म का नाम था कटी पतंग। चले अब की बार फिर से किशोर कुमार होगा, लेकिन किशोर कुमार के साथ लता जी की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है।
0: पूरा मत मानना जरीन, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी उठानी पड़े। और फिर ये भी तो सच है कि मैं एक मामूली घर का लड़का हूँ।
2: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो।
0: लेकिन जरीन, सिर्फ प्यार से तो सब कुछ नहीं होता। तुम बड़े घर की लड़की हो, तुम्हारे डैडी
2: तुम मुझे प्यार करते हो।
0: फिर मेरे कॉलेज का यही आखिरी साल है, बीए के बाद और पढ़ भी नहीं पाऊंगा। पता नहीं कब कैसी नौकरी मिले। और
2: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो।
0: प्यार तो करता हूँ जरीन।

लता मंगेशकर की आवाज में खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है। गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। किशोर कुमार की आवाज में अब की बार फिल्म नजराना का गीत पेश किया जा रहा है।

किशोर कुमार की आवाज में खूबसूरत सा गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। फिल्म का नाम था नजराना, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। शहरी उत्तराखंड से रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का ये प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई। पत्थर की सनम फिल्म का नाम, मनोज कुमार का खास एक्टिंग किया हुआ गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई। द हार्ट ऑफ द मिलियंस, द माइटी मुकेश की आवाज में अभी आपने सुना। पुरानी नगमे आज के ये प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए, जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में मुकेश जी की आवाज में ये गाना।

माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले मुकेश के बाद किशोर कुमार प्रोग्राम में।

मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अबकी बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। आज की इस प्रोग्राम में एक काफी

रेडियो SBS के जरिए ये काफी पुरानी है फिल्म का गीत आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है रेडियो SBS के जरिए। अभी आपने सुना शहरी उत्तराखंड से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में किशोर कुमार की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.NL उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी हमारा ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। मोहम्मद रफी एंड आशा भोसले प्रोग्राम में

मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में ये गाना बस आज की प्रोग्राम में पेश की गई। 100 बरस की जिंदगी से गाना कबूल और इसी तरह से मोहम्मद रफी और आशा की आवाज में गाना पेश की गई। चलिए प्रोग्राम में द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की ओर हम आपको ले चलते हैं।

द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-262-6611 और बाकी हर एक इंफॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 030-265-6560। चलिए प्रोग्राम में आपकी बार हम आपको ले चलते हैं किशोर कुमार की ओर। किशोर कुमार की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है, फिल्म का नाम सच्चा

किशोर कुमार की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म का नाम था सच्चा झूठा। किशोर कुमार की आवाज में गाना प्रोग्राम में पेश की गई। एक गाना महेंद्र कपूर की आवाज में पेश किया जा रहा है। यही फिल्म का नाम था सच्चा झूठा। किशोर कुमार के आवाज में गाना प्रोग्राम में पेश की गई। एक गाना महेंद्र कपूर के आवाज में पेश किया जा रहा है।

कपूर, महेंद्र कपूर की आवाज में ये गाना बस आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। संगीत भरी स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में मुकेश के आवाज में गाना पेश किया जा रहा है और अब की बार हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम संगम। संगम फिल्म का गीत आप प्रोग्राम में सुनते ही रहना।

श्रिया जी की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चले प्रोग्राम में आपकी बार गाना जो पेश होगा अभिजीत और अलका जी की आवाज में, अभिजीत और अलका जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। गीत जो आपकी बार पेश होगा अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान की आवाज में।

चौहान और अरिजीत सिंह की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11। इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं।

ये गाना भी आपने सुना। सुनवलो रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए हमारा ये प्रोग्राम भी आप सुन सकते हैं। शान और श्रेया घोषाल प्रोग्राम में

रेडियो SBS के जरिए खूबसूरत गाना शाना और श्रेया घोषाल की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे। अब की बार प्रोग्राम में जो पेश किया जा रहा है सभी सुनने वालों की सेवा में KK की आवाज में

रेडियो SBS के जरिए उदित नारायण और श्रेया जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरो बीते ये गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो SBS के जरिए जो

एक फिल्म जिसमें काफी खूबसूरत नगमे लाए गया है। इसी तरह से अभी आपने सुना अलका याग्निक, उदित नारायण और कुमार सानू जी के आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। फिल्म का नाम दिल है तुम्हारा। चलिए अब की बार फिल्म धड़कन की ओर। एक बार फिर से होगा उदित नारायण, अलका याग्निक एंड कुमार सानू प्रोग्राम में।

film Dhadkan. उदित नारायण और अलका साथ ही साथ कुमार सानू जे की आवास में ये गाना बस आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई. फिल्म का नाम धड़कन, उसी ये फिल्म का गीत अभी आपने सुना. रेडियो वेस्ट पे इसका प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और प्रोग्राम को जरूर सुनते ही रहना. स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030 22 66 66 11.

की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में प्रेम अगन फिल्म का नाम उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई।

film gedaan. Radio SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना. Why should I stop being for Ladi and lose my azadi? In short, first marriage rocks and then it is on the rocks. Conditions apply.

की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि ये गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का ये प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना।

रेडियो SBS के जरिए उदित नारायण के आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में एक गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और वो भी अलका जी की आवाज में ये गाना आप सुनते ही रहना। फिल्म का नाम सोल्जर।

की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो उम्मीद है। गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS के जरिए आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई। चले प्रोग्राम में अगली बार बैनी दयाल एंड श्रेया जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

Benny Dayal en Shreya जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में आशिकिंग और साथियों की आवाज में। गाना का बोल है बारिश।

प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 2-3-2-2-6-6-11। पापोन प्रोग्राम में और पापोन की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

अधूरी कहानी ये फिल्म का नाम पापोन के आवास में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में सभी सुनने वालों को वेलकम और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना कुमार सानू एनाल का प्रोग्राम में होगा

अलका की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आशा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है।

उदित नारायण और खासतौर अलका जी की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई। फिल्म का नाम हर दिल जो प्यार करेगा। रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। कुमार सानू एनालका।

में ये फिल्म एक रिश्ता उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में कुछ खूबसूरत नखमे बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है हेमा सर देसाई एन शंकर महादेवन की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

और शंकर महादेवन की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई। सुन वालों, हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0325656560। इसी टारगेट नंबर पर अपना हर एक इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं 24 पर दाग, यानी कि 24 घंटा लगातार ये टारगेट नंबर आप सभी के लिए बस होता है। या तो ईमेल कीजिए रेडियो SBS का वेबसाइट की जरिए radio.sbs.nl। अपना मोबाइल टेलीफोन की जरिए भी आप ईमेल कर सकते हैं, जरूर आप जाइए radio.sbs.nl वेबसाइट पर। तो चले प्रोग्राम में अब की बार हरिहरन एंड चित्रा की आवाज में एक गाना बस पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में मुकेश के बाद मोहम्मद रफी प्रोग्राम में। मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

काफी पुरानी फिल्म का गीत आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किए गए। मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गीत की ओर हम आपको ले चलेंगे लता मंगेशकर की आवाज में जो पेश किया जा रहा है। लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम पे पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों आपकी फरमाइश से हुआ इश्तिहारे जरूरी खबरें के लिए रेडियो SBS के जरिए कोई भी काम काज आपको पेश करवाना है सस्ती दामों में हर एक काम किया जा रहा है। इन्फॉर्मेशन लेने के लिए टेलीफोन नंबर है 0325656560 और ये तार की नंबर जो है टेलीफोन नंबर कंतूर का दफ्तर का जो है 24 पर दख बराबर होता है आपकी हर एक इन्फॉर्मेशन इन्फो के लिए। अब वैसे हमेशा भी आप ईमेल कर सकते हैं रेडियो SBS का वेबसाइट के जरिए radio.sbs.nl के जरिए और इसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी हमारा ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। मुकेश एन लता हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम परस मनी।

मुकीस और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। जले मोहम्मद रफी की आवाज में अब की बार ये गाना मेरे गाड़ी उड़न खटोला। गाना का बोल है मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

पूरन खटोला मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई रेडियो SBS की जरिए भी आपने सुना। किशोर एनाशा जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। संगीत भरी स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम ये है। आशा भोसले एन किशोर कुमार।

गाना जो प्रोग्राम में पेश किए गए किशोर और आशा जी की आवाज में, ये गाना भी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश किए गए सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले मुकेश और लता जी की आवाज में एक गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है, काफी पुरानी फिल्म का गीत होगा जो मुकेश और लता जी की आवाज में पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में। रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं आपकी बार लता मंगेशकर की आवाज में। ये गाना पेश किया जा रहा है पुरानी फिल्म दुलारी से पेश किया जा रहा है।

लता मंगेशकर और साथियों के आवाज में ये गाना पेश की गई है। पुरानी फिल्म दुलारी, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की इस पुरानी नगमे की खास प्रोग्राम में। किशोर एनाश, हम आपको ले चलेंगे फिल्म

0: बात है।
1: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। काफी प्यार भरी गाना अभी आपने सुना प्रोग्राम में जो पेश की गई है। द माइटी मुकेश, द माइटी मुकेश की आवाज में आज की प्रोग्राम में।

दमाइति मुकेश की आवाज में ये गाना पेश की गए रेडियो SBS के जरिए जो अभी आपने सुना। चले महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है। महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज में ये गाना धीरे धीरे बोल।

दिलीप कुमार और खास तौर पर विजयंती बाला का खास फिल्म फिल्म राम और श्याम उसी फिल्म का गीत पेश की गए महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज में ये खास गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई है। मोहम्मद रफी और आशा प्रोग्राम में अब की बार होगा और आपको हम ले चलते हैं ये गाना की ओर।

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता
1: हूँ। सुन बलो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। हमारा आज का प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा मीठे प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। बैठा आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0352 65 65 66। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

हेलो नमस्ते और आदाब, मैं हूँ आपकी आरजे अंशलि क्रमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो allemaal, dit is uw आरजे अंशलि क्रमलाल, die u van harte welkom heet in het programma गीतों के लहर। Wilt u reageren, kan het altijd, surf maar naar de website www.radiosbs.nl of bel naar de studio met 030-262-6611. Voor alle andere info kunt u altijd bellen met 030-265-6560. Dan gaan we naar het eerste liedje van vandaag. En dat is...

सैलरू सैलरे क्या बोला फिर बोला रे से फिर शाहरुख खान है ऐश्वर्या राय साहब में चंद्रचूर सिंह. De film gaat komende zondag door Udit Narayan, Elka Yachnik, Sonu Nigam en Jasbinder Nerula. Jhumka Chandida, Chandida, Jhumka Chandida.

फिल्म गुड न्यूज से आपने सुना बी प्राक की आवाज में माना दिल गाने के बोल थे, और अब आप सुनिए शमशाद बेगम की आवाज में कभी यार कभी पार लगा तीरे नजर।

तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। आपने सुना मन्ना दे की आवाज में बेहतरीन गाना फिल्म सीमा से, और अब आप सुनिए आतिफ असलम की आवाज में। गाने के बोल है तेरा हुआ और फिल्म का नाम है लव यात्री।

मैं हारी पिया हुई तेरी जीत रे। गीता दत्त की आवाज में आपने सुना ये बेहतरीन गाना फिल्म आर पार से। ये है प्रोग्राम गीतों के लहर रेडियो SBS के जरिए से। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है हम दिल दे चुके सनम फिल्म से। गाने के बोल है निमोड़ा निमोड़ा। कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में आप सुनिए ये बेहतरीन गाना।

बिंदिया चमके चूरी खन के लौंग मारे लश्कारे हम हो गए तुम्हारे, इस गजोंग दूर सोनू निगम एनल के याचने कैं कौमता है द फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे। Uit de film Bajrangi Bhaijaan is het volgende liedje via Radio SBS. In het programma Gieton Kelleher hoort u dan Elele, elele, elele, elele, elele, telbeta selfie, lele, re.

0: खूबसूरत हैं आंखें तुम्हारी, बना दीजिए इनको किस्मत हमारी।
1: उसे और क्या चाहिए जिंदगी में, जिसे मिल गई है मोहब्बत तुम्हारी।
2: किसका चेहरा अब मैं देखूं तेरा चेहरा देख के। बेहतरीन गाना आपने सुना फिल्म तरकीब से, जगजीत सिंह और अलका याचनिक की आवाज़ में। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है हरि हरन और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। फिल्म दिल विल प्यार व्यार से आप सुनिए, गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम।

रेडियो SBS के जरिए से आपने सुना फिल्म खुदा हाफिज से। आप हमारी जान बन गए, मिथुन, विशाल मेहरा और अजीज कौर की आवाज में। और अगला गाना रेडियो SBS का प्रोग्राम में है फिल्म ऐतराज से। उदित नारायण और सुनिधि चौहान की आवाज में आप सुनिए गीला गीला गीला दिल गीला गीला।

देखो दिन ये न ढलने जाए. दित प्रातः लीजिए इस गजंग दौर आशा भोसले एंक वाम आयो द फिल्म भावना. आयो द फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड इस इत फोगंत लीजिए फिया रेडियो SBS गजंग दौर श्रद्धा कपूर. मैं फिर भी तुमको चाहूंगी.

बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफ़र है। धड़क आहिस्ता है ये दिल, मोहब्बत का सफ़र है। कम आउट द फिल्म जॉगर्स पार्क। Gaan we dan verder met uit de film Reis. Gezongen door Pauni Pandey komt Leila met Leila.

भी सरफिरा तू भी सरफिरी इस गजंग दौर सिद्धार्थ माधव नीति मोहन एंड करण मेहता एंड कम्स आउट द फिल्म कट्टी पट्टी एंड आउट द फिल्म कभी अलविदा ना कहना कम्स द टाइटल सॉन्ग गजंग दौर अलका याचिक एंड सोनू निगम।

जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था, एक तू ही वो लड़की है जिसे मैं प्यार करता था, इस सुधीर कुमार सानू है, बस आउट ऑफ फिल्म दिलवाले। हाँ मतलब फेरदर मैथ बजरंगी भाईजान, खुशा दूर जावेद अली कौम, तू जो मिला।

0: नहीं तू अभी तक है हसी और मैं जवान, तुझको कुर्बान मेरी जान मेरी जान।
1: ए मेरी जोहर जवी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हसी और मैं जवां, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। फिल्म वक्त से आपने सुना मन्ना डे की आवाज में, और रेडियो SBS FM के प्रोग्राम में आप सुनिए अगला गाना, के की आवाज में आप सुनिए फिल्म गैंगस्टर से, भीगी भीगी सी है रातें।

तमाशा से आपने सुना अरिजीत सिंह और अलका याचिक की आवाज में अगर तुम साथ हो, और अब आप सुनिए अगला गाना प्रोग्राम गीतों की लहर में। कमाल खान और अलका याचिक की आवाज में आप सुनिए तुमको ना भूल पाएंगे से, क्या हुआ तुझे।

तुमसे मिलके ऐसा लगा तुमसे मिलके अरमा हुए पूरे दिल के। इस अयोध्या फिल्म पर रिंदा खजांदोर, आशा भोसले एंड सुरेश वाडकर। खजांदोर हेमंत कुमार कोमदान, अयोध्या फिल्म खामोशी, फिया रेडियो SBS, तुम पुकार लो।

फोटोग्राफी इज अ हॉबी दर्शन, नॉट अ करियर. पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना.